0: शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहा
0: देभ्यो देवेभ्य स्वाहा
1: भूमाय भूमाय स्वाहा
0: सुरक्षितये स्वाहा
1: सुदक्षित

0: सदा ससा सगरी सरी सदा पदारी सा
1: रि गा गा गा गा गा गा री सरी री री री री री सदा ससा सगरी

0: लॉर्ड हनुमान?
1: राम नाम इज लाइक अ मैग्नेट सन, एंड यू आर चांटिंग राम नामा इन दिस मोस्ट होली प्लेस ऑफ प्रशांति निलयम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ आवर बिलवड भगवान श्री सत्य साई बाबा.
2: यस यस, आर साई हु इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स and the five elements, prithvi, apaha, akasha, agni and vayu. But weren't you called vayuputra too?
1: Yes, but what do I know about it? It's all Sri Rama's will.

0: हर हर महादेव।
1: हनुमान, यू हैव लर्न्ड व्हाट ज्ञान इज। नाउ इट्स टाइम यू लर्न व्हाट इज भक्ति।
0: हाउ डू आई लर्न लॉर्ड?
1: महाविष्णु हैज डिसेंडेड टू वाइप आउट द वर्ल्ड ऑफ असुरास। ही हैज टेकन द मोस्ट एनचांटिंग फॉर्म ऑफ श्री राम।
0: श्री राम,
1: चांट हिज नेम एंड भक्ति विल ग्रो लाइक अ ह्यूज ट्री बेयरिंग स्वीट फ्रूट्स। इट विल फिल यू विद ब्लिस।
0: श्री राम, श्री राम, श्री राम।